0: Well, the rebellion within the TMC has now spilled from Bengal into Parliament, triggering a full-blown political showdown. Rebel MP Kakoli Ghosh has claimed that nearly 20 TMC MPs are ready to align with the NDA and has even sought separate seating arrangements in the Lok Sabha, signalling the possibility of a formal split. Earlier, West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari met with rebel TMC MPs at the residence of Shatabdi Roy in the national capital. It is learned that the discussions lasted for around 40 minutes. Among the rebels was Partha Bhaumik, a close aide of Abhishek Banerjee. He was seen accompanying Shubhendu Adhikari to the gate as the latter left Shatabdi Roy's house. TMC MP Saugata Roy, on the other hand, has dismissed speculation of joining the rebel camp. He has slammed Kakoli Dastidar, claiming that her fight against the TMC leadership is personal. The TMC veteran has also admitted that the developments are a wake-up call for the party. The Mamata camp, meanwhile, has branded the rebels as opportunists and traitors, insisting that they resign and seek a fresh mandate on BJP ticket. The BJP has seized on the turmoil and has accused Mamata Banerjee of reducing the party to a family enterprise.
1: इनको इतनी समस्या थी, हम हार गए तो इनको समस्या हो गई, तो जहाज छोड़ के भाग रहे हैं लोग। पहले क्यों नहीं बोला तुमने इलेक्शन से पहले? तब तो सब कुछ ठीक था। बैकग्राउंड कुछ नहीं है, इसमें बीजेपी का खेल है। ईडी सीबीआई वाला तो केस नहीं है, लेकिन लोकल केस जरूर इनके ऊपर बनता है। पुलिस से इनको डराया धमकाया जा रहा है। अरे मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं कहीं नहीं जाने वाला, दीदी के साथ हूँ, खड़ा हूँ।
2: एमपी हो या एमएलए हो, ये तृणमूल कांग्रेस से दीदी का सिंबल लेकर दो दिन पहले दीदी दीदी दीदी दीदी आज क्या एनडीए के साथ मैं सुन रहा हूँ, तो ये क्या पॉलिटिक्स हुआ? काल दीदी दीदी दीदी, वो ममता दीदी का जो इतना स्ट्रगल है, देखिए बहुत अच्छा काम ममता दीदी का गवर्नमेंट किया है, भूलो है, लेकिन सब मिलकर ही पार्टी होता है। थोड़ा बहुत इलेक्शन इधर उधर हो गया तो आज दूसरा घर, इसका कोई क्रेडिबिलिटी होता है? ये पब्लिक ठीक से नहीं लेता। ये
3: 2/3 से ज्यादा एमपी साइन किए हैं, उसका मतलब है 20 एमपी, मतलब 2/3 से ज्यादा। वो लोग क्यों किए हैं ये बोल नहीं पाऊंगा, मगर एक तानाशाही के खिलाफ लोगों का आवाज़ उठ रहा है और ये जमहूरियत के लिए बहुत ज़रूरी है। वो लोग से बात नहीं हुआ, क्या करेंगे वो भी मुझे मालूम नहीं। हमारा साथ जो सुन रहे हैं उनका स्टैंड का कोई पूरा स्टैंड अलग है, मगर जमहूरियत के लिए तानाशाही के खिलाफ जो लोग आवाज़ उठाएगा, मैं उसके साथ नहीं खड़ा हो सकता हूँ, अलग बात है, मगर उसको बधाई जरूर देंगे कि तानाशाही के खिलाफ जमहूरियत की आवाज़ बुलंद हुआ है।
0: So trouble seems to be mounting for the Mamata Banerjee government with each passing day. With that, it's a wrap on this bulletin. Thank you for watching India Today. But do stay with us, as on the other side, we'll get you more on AIMIM leader Waris Pathan now slamming the Bengal government's order of statewide madrasa. More on this on the other side.

0: पानी चार दिन को एक बार नहीं आ रहा, वो भी सीधा नहीं आ रहा, उसमें पूरा कचरा कचरा पानी आ रहा, बास आ रहा पानी में भी, पी नहीं सक रहे हम लोग, टाइम पे भी नहीं आ रहा वो, कभी कभी 11 बजे आ रहा, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे वैसा आ रहा।
1: आपका नाम बताइए, आप कितने साल से यहाँ पर रह रही है, क्या पहले भी ऐसे ही प्रॉब्लम था?
2: जी पहले भी इससे भी ज्यादा था, अब चार दिन में एक बार आता था नल, अब तो दो दिन में एक बार नल आ रहा, वो भी आ रहा मगर चार दिन में एक बार आता था, अब तो दो दिन में एक बार आता ना नल, तो पूरा गंदा आ रहा एकदम, पानी बहुत प्रॉब्लम हो रहा और पानी में भी बहुत गंदगी, पूरा कीड़े वो सब आ रही।
1: अम्मा आप कब से रह रहे हैं?
3: నా పేరు సరోజ్ని, నాకు హిందీ రాదు, తెలుగులో చెప్తాను. అదే నీళ్ళకి ప్రాబ్లం అవుతుంది, కొంచెం అంత పురుగులుగా ఉంటున్నాయి.
1: సో వాట్ దే ఆర్ సేయింగ్ ఇస్ దే ఆర్ ఫేసింగ్ సివియర్ వాటర్ క్రైసిస్ హియర్ అండ్ ద వాటర్ ఇస్ కంటామినేటెడ్ ఇస్ వాట్ దే హావ్ టు సే. ఆప్కా నామ్ బతాయే?
4: హమీద, అబ్దుల్ హమీద్ హై. ఇదర్ పానీ బహుత్ ముష్కిల్ హై, బహుత్ ముష్కిల్ హై, హఫ్తే మే ఏక్ బార్ భీ నహీ ఆ రహా పానీ, ఔర్ గందా గందా పానీ ఆ రహా హై, और डेनिस में से पूरा गंदा आ रहा है, कचरा पानी पीना पड़ रहा है।
1: तो अधिकारियों ने कहा कि टैंकर भिजवा रहे हैं, परेशानी का हल हो रहा है, आपके पास क्यों नहीं?
4: नहीं कुछ भी नहीं भिजवा, अब तक तो कुछ भी नहीं है, 10 साल हो गए ऐसी जिंदगी निकाल रहे हम लोग।
1: आपके पास पहले कैसे आता था, दो दिन में एक बार आता था या फिर चार दिन में?
5: पहले दो दिन में एक बार आ रहा था, अब चार दिन में एक बार आ रहा, 10-15 मिनट तो गलीस पानी आ रहा पूरा, अब उसके बाद बाहर से खरीद के लेके आके पी ले रहे पानी पूरे लोग,
6: पड़ रहा पानी, पानी पूरा खरीदना पड़ रहा जब से आया मैं, काफी टाइम हो गया रहते रहते, जब से खरीदना पड़ रहा मेरे को पानी, बहुत खरीदा।
5: पहले तो टैंकर आ रहे थे हमारे को, अब टैंकर भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, जो कुछ भी पीना है बाहर से लेकर लेना पीना।
1: So this is what the residents have to say. Well, this is not a single area in the city of Hyderabad. Several such areas, colonies are now receiving shortage or a very few amount of water. Well, the authorities say that they are working 3 shifts in a day and they have increased the regular water supply. All the adequate necessities are being arranged, but they're trying their best to beat this particular crisis that is rising in the city of Hyderabad. Not only Rasulpura, we have also seen areas in Mushirabad and Old City and other areas of Hyderabad which are right now facing a deep crisis of drinking water supply or municipal water supply, and also on the same time the drying of borewells have also caused a very big crisis in the apartments and the residential areas, the colonies as well. Now to beat all this, the authorities are saying that they are working and waiting for the monsoon to arrive so that the groundwater level also fills in and the bores again dry up, which have not dried for the past 4-5 years are now dried up for the past few days or few months is what they have to say. Let's look at the ground report that is coming in.
7: Hyderabad is battling one of its worst water crises in recent years. Across several parts of the city, residents are reporting irregular water supply, dry borewells, and long waits for tanker deliveries. Soaring temperatures and delayed monsoon rains have deepened the shortage.
8: Do din ko aane ka, do char din mein aa raha abhi, pura din ja ke aa raha, pura pani. 5 दिन को आता है अभी, टैंकर भी नहीं भिजा रहे, कुछ भी नहीं भिजा रहे, बच्चे बीमार पड़ रहे, वो पानी लेकर के बाहर से ला के पी रहे।
7: अकॉर्डिंग टू हैदराबाद वाटर बोर्ड, टैंकर डिमांड हैज सर्ज्ड टू रिकॉर्ड लेवल्स दिस ईयर। ऑफिशियल से डेली टैंकर बुकिंग्स व्हिच यूजुअली रेंज बिटवीन 1500 एंड 2000 हैव क्रॉस्ड 15,000 इन रीसेंट वीक्स।
9: वी हैव स्टार्टेड इवन नाइट शिफ्ट आल्सो, in 3 shifts we are working, so maximum we are trying our best to give the tankers within 24 hours in some areas where demand is high. In West City the more scarcity is there, groundwater, so there it is taking more than a day also, so but within a 2-3 days time the monsoons about to come, we will happily manage after 1 day.
7: Residents have pointed out that the problem goes beyond scarcity, saying they are receiving contaminated water despite repeated complaints.
10: तीन दिन गए तो चार दिन के बाद आ रहा है पानी, पानी आ रहा है बहुत खराब आ रहा है, बहुत मट्टी आ रहा है, उसमें कीड़े भी आ रहे हैं, अच्छा पानी हो रहा है, एक दिन की चुका को एक दिन पानी आना पड़ता।
1: Residents here claim that they have been suffering for the past 6 months with contaminated water, and the depletion in groundwater level has caused the water supply of almost once in 4-5 days is

0: ने बहुत अच्छे से आपको विस्तार में कह दिया है, मां माटी मानुष की पार्टी तृणमूल के माध्यम से, दीदी के आशीर्वाद से और अभिषेक के समर्थन से और उनके गाइडेंस से हमारे 29 एमपीज जीत करके आए, सब तृणमूल मां माटी मानुष के नाम पर। उसमें से एक का देहांत हो गया तो 28 बच गए। इन गद्दारों से मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हें तकलीफ हो रही थी तो तुमने इलेक्शन के बाद ये तकलीफ क्यों जाहिर की? इलेक्शन के पहले करना चाहिए था, और इलेक्शन के बाद अनेकों आरोप लगाए सुखेंदु शेखर ने और रिजाइन कर दिया। उसका आरोप लगा सही है गलत है वो तो अलग बात हो गया, लेकिन कम से कम उसने एक पॉलिटिकल एथिक्स दिखाया कि वह जिस पार्टी में था, जिस सिंबल के साथ राज्यसभा में एमपी था, उसकी समस्या थी, उसने रिजाइन कर दिया। तुम्हारे में भी अगर पॉलिटिकल एथिक्स है तो तुम भी रिजाइन कर दो उसकी तरह और आ जाओ बीजेपी के टिकट पर लड़ने के लिए।
1: आरएसएस सिग्नल दे बीजेपी इज गोइंग टू बी वर्स देन जेडीएस। बर्थ पढ़ते हैं प्रादेशिक पक्ष की तरह कनिष्ठ हालत आ गई है। ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ದೆವ್ವದ ನೆರಳು ಜೊತೆ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ದೆವ್ವದ ನೆರಳು ಯಾವುದು? ಬಿಜೆಪಿ। ದೆವ್ವ ಯಾವುದು? ಸೊ ಈ ನೆರಳು ಜೊತೆ ಜಗಳ ಆಡೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ದೆವ್ವ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಆಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ।
2: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: सर, एक पार्टी 15 साल सत्ता में रहती है, लेकिन 15 हफ्तों के अंदर ही उसके जो 20 सांसद हैं, वो बताया जा रहा है वो बागी हो गए हैं, उन्होंने अपना गुट बना लिया है, वो बीजेपी के नेताओं से लगातार मिल रहे हैं। आपको अंदेशा था कि ऐसा कुछ होगा?
1: ये हम लोग तो जब सत्ता पे रहे थे, ये टीएमसी पार्टी, उस समय हम लोग बराबर ये कहते आ रहे हैं सालों से कि जिस दिन ये सत्ता से बाहर होगी उस दिन टूट जाएगी, खलबली मच जाएगी, तितर बितर हो जाएगी। आज से नहीं, सालों से कहते आ रहे हैं। ये हमारा पूर्वाभास, ये बहुत पहले हम कर चुके हैं कि सत्ता है तो टीएमसी पार्टी है, सत्ता नहीं है तो टीएमसी पार्टी उब जाएगी, हवा में मिल जाएगी, वैसे हो रहे हैं।
0: आपने भी एक अपील जारी करी कि तमाम जो सेकुलर फोर्सेस हैं, तमाम जो लोग हैं,
1: नहीं,
0: वो साथ में आए।
1: मैंने ये कहा कि बंगाल में इतने सारे लोग टीएमसी को तो वोट डाले हैं, कोई अच्छा इनकी सोच थी, और वो देखे आप क्या हो रहे हैं। तो इसको मद्देनजर जो ईमानदार बचे कुचे जो टीएमसी पार्टी की कार्यकर्ता है, ये समर्थक है, उसके सामने कांग्रेस पार्टी है, वो अगर चाहे कि राजनीति करना है तो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन हम कोई मंत्री पद देंगे, कोई मेयर पद देंगे ये नहीं कह सकते, कि नोट की बंडील देंगे ये मैं नहीं कह सकते। ऐसे खुले मन अगर आए तो कांग्रेस पार्टी में जगह मिलेगा, लेकिन वो चोर चकोरे के लिए नहीं, ये ईमानदार जो बचे कुछ समर्थकों है कार्यकर्ता उनके लिए।
2: Currently reviewing the framework for variable net worth requirements for stock brokers so that capital requirements better reflect operational scale and risk. We are examining improvements in price discovery, particularly through the pre-open call auction mechanism for IPOs and relisted securities to ensure more stable and efficient market openings. We are also working towards easing compliance requirements for research analysts, including rationalizing requirements such as call recording obligations in

0: देखिए, आपस में जिस ढंग से खींचतान है, फ्रस्ट्रेटेड लोगों का समूह है, जनता से नकारे गए लोगों का समूह है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतवर्ष के हर नागरिक के परिवार के सदस्य की तरह लोगों का केयर करते हैं। आज जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है और 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने में माननीय मोदी जी ने सफलता हासिल की है। इनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है, ये एजेंडा विहीन लोकतांत्रिक प्रणाली को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और कहा जाए तो जितनी भी क्षेत्रीय दल हैं, लोकतांत्रिक न होकर के राजतंत्र के आधार पर चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी से पूछिए कोई अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, बताएं जरा। आप तृणमूल का हालत आप देख ही रहे हैं, और जो क्षेत्रीय दल है इनकी क्या स्थिति है आप अच्छी तरह जानते हैं। कांग्रेस पार्टी स्वयं बताए कि उनका नेता कौन है।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: Welcome back, viewers. To the point, once again, putting the spotlight on stories that rarely find the spotlight but need to be told. This one, the destination is a government job. The journey, however, is anything but easy. Lacks of candidates on the move for the UP constable exam. Scenes of chaos, overcrowding have once again raised questions about infrastructure, planning and jobs. Here is a special report. We leave you with this.
1: Trains, overflowing platform, and endless hours of waiting. Some spread bed sheets on station floors, others make do with plastic sheets. It's a familiar scene year after year. Every recruitment exam brings with it not just the test of knowledge, but the test of endurance. From towns and villages across Uttar Pradesh, thousands set out with a single goal, clearing the UP constable exam.
2: डेढ़ घंटा गाड़ी खड़ी हुई थी
3: गर्मी के माहौल में आप सब परेशान
2: पैदल वहां से यहां स्टेशन तक पैदल आए
4: कोई व्यवस्था नहीं बस यहीं से फिर जाना दूसरा स्टेशन के लिए गाड़ी पकड़ना डायरेक्ट मेरे लिए कोई गाड़ी भी नहीं है जैसे कि बोला गया था कि बस का किराया फ्री है 10% भी छूट नहीं है उसमें 25% की आप छोड़िए
5: अभी स्थिति ठीक है अभी 50% की रियायत मिल रही है जैसे मेरे कई दोस्त गए हैं तो बता रहे हैं 50% छूट मिल रही है
1: Nearly 28.9 lakh candidates competing for just 32,679 constable vacancies. The odds are daunting, the journey even more so. Making it to the exam hall is just the first hurdle. What they fear most are paper leaks and cancelled tests.
6: सिर्फ देखे आए इतना कॉन्फिडेंट लेकिन ये भी भरोसा नहीं है कल को हमारा आएगा भी रिजल्ट आएगा नहीं पता लगा सुबह पता न्यूज आ गई कि पेपर लीक हो गया
7: मेरे लिए तो बहुत जरूरी है बस हो जाए बस पेपर लीक ना हो कहने का मतलब बस ये हो जाए ठीक से
8: क्या उम्मीद करते हैं सरकार से पेपर अच्छे से
7: पेपर लीक ना करें बस यही उम्मीद रखते हैं बस
9: जो लोगों के जो फेस कर रहे हैं वो पेपर लीक के बारे में कर रहे हैं
8: किस तरीके से संघर्ष करके यहाँ पर दो दो दिन का सफर तय करके भीड़ में जहाँ पे खड़े होने तक की जगह नहीं है उस तरीके से लोग आते हैं यहाँ पर पीछे आपके सामने नज़ारा दिखाएगी कैमरे पे किस तरीके से जो लोग हैं वो नीचे बेडशीट तक नहीं है लोग यहाँ पर आप देखेंगे तो मोमियाँ बिछाने को मजबूर हैं भीषण गर्मी हो रही है ऐसे में किस तरीके से जो ये छात्र हैं उन चीज़ों से गुजरते हैं और उसके बाद किस तरीके का सामना करना पड़ता है एक ही दरख्वास्त और एक ही रिक्वेस्ट है सरकार से कि बस पेपर ठीक हो जाए पेपर लीक ना हो पास हो या ना हो ये तो बाद में देख लेंगे
1: They have battled for space on trains. They're also fighting a system that has repeatedly tested their patients with leaks and poor infrastructure.
10: ऐसे मुद्दों को दिखाने के लिए मीडिया भी लोकल एक मीडिया दिखा पाती है इंटरनेशनल जो मीडिया है वो नहीं दिखाती है इंटरनेशनल लेवल की मीडिया है वो क्या करती है ये देखे कि झालमुरी कैसे बनती है बंगाल में झालमुरी का कैसे प्रचार होता है वहाँ प्रधानमंत्री जी वो मेलोडी के चॉकलेट कैसे खिलाते हैं
1: दिस टाइम दे होप द टेस्ट मेजर्स ओनली देयर मेरिट With Sima Chawla, Gajendra Tripathi and Abhishek Tripathi, Bureau Report, India Today.

0: Welcome back. You are with the news today. Let's turn to our Get Real India story. A lot of focus in recent weeks has been on the NEET and CBSE exams. But what of the examinations that involve government job seekers? Lakhs of government job aspirants in India. The examination process begins long before they even enter the examination hall. It starts on crowded railway platforms, inside packed train compartments, and through sleepless nights, waiting for a chance to even enter the examination center. Chaotic scenes have been witnessed at several railway stations across Uttar Pradesh as aspirants travel in pursuit of their dream government job. It's our Get Real India story.
1: Trains, overflowing platform, and endless hours of waiting. Some spread bed sheets on station floors, others make do with plastic sheets. It's a familiar scene year after year. Every recruitment exam brings with it not just the test of knowledge, but the test of endurance. From towns and villages across Uttar Pradesh, thousands set out with a single goal, clearing the UP constable exam.
2: डेढ़ घंटा गाड़ी खड़ी हुई थी
3: गर्मी के माहौल में आप सब परेशान
2: पैदल वहां से यहां स्टेशन तक पैदल आए
4: कोई व्यवस्था नहीं बस यहीं से फिर जाना दूसरा स्टेशन के लिए गाड़ी पकड़ना डायरेक्ट मेरे लिए कोई गाड़ी भी नहीं है जैसे कि बोला गया था कि बस का किराया फ्री है 10% भी छूट नहीं है उसमें 25% की आप छोड़िए
5: अभी स्थिति ठीक है अभी 50% की रियायत मिल रही है जैसे मेरे कई दोस्त गए हैं तो बता रहे 50% छूट मिल रही है
1: Nearly 28.9 lakh candidates competing for just 32,679 constable vacancies. The odds are daunting, the journey even more so. Making it to the exam hall is just the first hurdle. What they fear most are paper leaks and cancelled tests.
6: सिर्फ देखे आए इतना कॉन्फिडेंट लेकिन ये भी भरोसा नहीं है कल को हमारा आएगा भी रिजल्ट आएगा नहीं पता लगा सुबह पता न्यूज आ गई कि पेपर लीक हो गया
7: मेरे लिए तो बहुत जरूरी है बस हो जाए बस पेपर लीक ना हो कहने का मतलब बस ये हो जाए ठीक से
8: क्या उम्मीद करते हैं सरकार से पेपर अच्छे से
7: लीक ना करे बस यही उम्मीद रखते हैं बस
9: जो लोगों के जो फेस कर रहे हैं वो पेपर लीक के बारे में कर रहे हैं
8: किस तरीके से संघर्ष करके यहाँ पर दो दो दिन का सफर तय करके भीड़ में जहाँ पे खड़े होने तक की जगह नहीं है उस तरीके से लोग आते हैं यहाँ पर पीछे आपके सामने नज़ारा दिखाएगी कैमरे पे किस तरीके से जो लोग हैं वो नीचे बेडशीट तक नहीं है लोग यहाँ पर आप देखेंगे तो मोमियाँ बिछाने को मजबूर हैं भीषण गर्मी हो रही है ऐसे में किस तरीके से जो ये छात्र हैं उन चीज़ों से गुजरते हैं और उसके बाद किस तरीके का सामना करना पड़ता है एक ही दरख्वास्त और एक ही रिक्वेस्ट है सरकार से कि बस पेपर ठीक हो जाए पेपर लीक ना हो पास हो या ना हो ये तो बाद में देख लेंगे
1: They have battled for space on trains. They're also fighting a system that has repeatedly tested their patience with leaks and poor infrastructure.
10: ऐसे मुद्दों को दिखाने के लिए मीडिया भी लोकल एक मीडिया दिखा पाती है इंटरनेशनल जो मीडिया है वो नहीं दिखाती है इंटरनेशनल लेवल की मीडिया है वो क्या करती है ये देखे कि झालमुरी कैसे बनती है बंगाल में झालमुरी का कैसे प्रचार होता है हां प्रधानमंत्री जी वो मेलोडी के चॉकलेट कैसे खिलाते हैं
1: This time they hope the test measures only their merit. With Sima Chawla, Gajendra Tripathi and Abhishek Tripathi, Bureau Report, India Today.
0: And finally, let's end tonight with a good news today story. High in the Himalayas, India has achieved a major engineering milestone. The Zozila Tunnel breakthrough brings all-weather connectivity to Ladakh a step closer, promoting easier travel, stronger logistics and year-round access to one of the country's most remote but beautiful regions. Take a look at Good News Today.

0: And we have breaking news coming in. There's high drama over the Rajya Sabha polls in Madhya Pradesh after poll body rejects Congress candidate's nomination. Congress candidate Meenakshi Natarajan speaks to India Today. Meenakshi Natarajan says it's clearly attempting to manipulate the Rajya Sabha election just as they previously subverted elections in Madhya Pradesh. ECI is likely to meet Congress delegation at 12 p.m. tomorrow. This is the latest that we're getting in. Meenakshi has spoken exclusively to India Today and she is saying that there is an attempt to manipulate the Rajya Sabha election just as the previously subverted elections in Madhya Pradesh. Listen into what she has to say.
1: इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन. नामांकन रद्द होने के बाद पहली बातचीत है ये मीनाक्षी नटराजन की किसी भी मीडिया संस्थान से. मीनाक्षी जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी.
2: देखिए, जब उन्होंने ये देखा कि इनका पूरा हाउस यूनाइटेड है, पहली बात तो ये है कि उनका तीसरा कैंडिडेट भरने का तो मामला अपने आप में उनकी राजनीतिक शुचिता कहाँ आज ठहर गई है जाकर, किस तरह से दलदल में फंसी हुई है उसको दिखाता है. उन्होंने सोचा कि वो खरीद फरोख्त की राजनीति करके स्कोर सेटल करेंगे. जब उनको दिखा कि ऑर्गेनिकली तीन दिन से हमारे सारे एमएलए अपने आप यहाँ आ रहे हैं और साथ में हैं, जब पूरा हाउस यूनाइटेड है, तो उन्होंने उसको पूरा करने के लिए एक बिल्कुल फर्जी बात पेश की. जो एक लीगल नोटिस है जिसका कोई अभी तक कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया है, ये प्री कॉग्निशन स्टेज में था और उससे कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ, कोई केस नहीं है, तो उसको उन्होंने आधार बनाया. और उसके बाद जब उन्होंने फाइनल ऑर्डर्स दिए, उन फाइनल ऑर्डर्स में हमारे जो आर्ग्यूमेंट्स पेश किए हमारे वकीलों ने, उसका उसमें कोई जिक्र तक नहीं किया, जिससे ये बहुत स्पष्ट है कि ये कहाँ से मोटिवेटेड था, किस तरह से ये फैसला हुआ. दिस वॉज नॉट अ लीगल बैटल विच वी लॉस्ट. दिस इज अ बैटल विच वी लॉस्ट अगेंस्ट पॉलिटिकल विल. ये जो लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश है, जो वोट चोरी से चालू हुई, अब वो सीट चोरी तक पहुंच गई है और ये उसका साफ प्रमाण.
1: बीजेपी कह रही है कि आप सांसद भी रह चुकी हैं, बावजूद इसके आपने उसे छुपाया, ये उनका कहना है, जबकि छुपाना नहीं चाहिए.
2: छुपाया? अगर कोई लीगल केस है, यदि कोर्ट ने कॉग्निसेंस लिया है, मेरे पे ऊपर कोई चार्जेस फाइल हो गए हैं, उसको अगर मैं नहीं लिखती हूँ तो सही बात है कि हमने कुछ छुपाया. लेकिन जब कोई केस ही नहीं है जिसका कोर्ट ऑफ लॉ ने संज्ञान ही नहीं लिया है, तो उसको कैसे कहेंगे कि वो छुपाया है. ये तो ब्लेटेंट एरर है और ये कोई लीगल बात नहीं है. बहुत स्पष्टता से वहां दिखाई दे रहा था. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज कॉम्प्रोमाइज्ड. मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहती हूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज कॉम्प्रोमाइज्ड और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सत्तारूढ़ दल की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बन के काम कर रही.
1: दिस इज ऑल.
2: ये पूरी तरह से फाउल प्ले है. महिलाओं की बात नहीं है, ये पूरी तरह से इलेक्शंस को लूटने की कोशिश है और पूरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सबवर्ट करने की कोशिश.
0: All right, that was Meenakshi Natarajan speaking exclusively to India Today, and she is saying that there was no legal case against her. It was just a show cause notice, and there were no charges against her which were to be mentioned in the affidavit, because of which the whole drama we've been seen unfolding over the Rajya Sabha seat. For more on that, we have Ravish Pal joining in. Ravish Pal, now we're hearing from Meenakshi. She's saying that she was just given a show cause notice. There was no legal case against her which she could mention in the affidavit. So all the drama that we've been seeing ensuing over this, over the Rajya Sabha polls, now after which the Election Commission rejected her candidature also, she is completely rejecting it and speaking exclusively to India Today, saying that there was no legal case to mention in the first place.
3: बिल्कुल, मीनाक्षी नटराजन के साथ साथ आपको बता दें कि कांग्रेस की लीगल सेल के जितने भी लोग हैं वो सब इसी बात को कह रहे हैं कि दरअसल जो भी नॉमिनेशन प्रोसेस होती है उसमें कहीं पर भी शो कॉज नोटिस अगर आपको कहीं मिला है तो उसे मेंशन करने का कोई कॉलम नहीं होता है. उसमें क्रिमिनल रिकॉर्ड, क्रिमिनल हिस्ट्री अगर कोई है आपकी, उसके कॉलम जरूर होते हैं. और अगर इस तरीके का कोई केस होता है जिसमें अक्यूज्ड हो जो भी कैंडिडेट हो, तो उनको उसे मेंशन करना होता है. बट ऐसा कोई कॉलम नहीं होता जिसमें शो कॉज नोटिस के लिए मेंशन करना हो, और यही कांग्रेस की लीगल सेल का भी जो कांग्रेस के बड़े लीडर्स हैं जो लीगल फ्रेटर्निटी से हैं, विवेक तनखा हो, अभिषेक मनु सिंघवी हो, कपिल सिब्बल हो, वो भी यही बात कह रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा मैटर है इसे जानबूझ के इस तरीके से बनाया गया है कि बीजेपी जो है वो यहाँ पे क्लीन स्वीप करे और अपनी गलती को छुपाने के लिए, क्योंकि बीजेपी जो है वो कांग्रेस के एमएलएस को तोड़ नहीं पाई। आपको बता दें कि आज दिन भर से भोपाल में कांग्रेस के एमएलएस को बेंगलुरु शिफ्ट करने की प्रोसेस चल रही थी और कांग्रेस का ये एलिगेशन है कि क्योंकि उनका हाउस पूरा यूनाइटेड रहा, कांग्रेस के किसी भी एमएलए को बीजेपी खरीद नहीं पाई, कोई हाउस ट्रेडिंग नहीं हो पाई और इसीलिए बीजेपी ने एक बैकडोर से जो कैंडिडेट है कांग्रेस की ओनली कैंडिडेट थी राज्यसभा की मध्य प्रदेश से, उनके नॉमिनेशन को रद्द करवाया है। बीजेपी के इस एलिगेशन, बीजेपी ने हालांकि इस एलिगेशन को खारिज किया है, लेकिन फिर भी कांग्रेस जो है वो अभी, आपको बता दें कि जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है भोपाल में, वहां पे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं रात को, और इसके साथ ही कल दिन में 12 बजे भी इलेक्शन कमीशन के साथ उनकी मीटिंग है, वहां पे वो अपना जो आर्ग्यूमेंट है वो रखेंगे वहां पे और बताएंगे कि जो एलिगेशन लगाए गए हैं पूरी तरीके से गलत है और उनका कैंडिडेचर जो आज कैंसिल किया गया है वो गलत है, क्योंकि कहीं से भी नॉमिनेशन प्रोसेस में शो कॉज नोटिस को मेंशन करने का कॉलम नहीं होता है। क्रिमिनल केसेस को मेंशन जरूर करना होता है, लेकिन मीनाक्षी नटराजन को सिर्फ शो कॉज नोटिस मिला था, वो फिलहाल नॉन कॉग्निजेबल स्टेज पे था और इसीलिए उनका कैंडिडेचर खत्म करना, रद्द करना पूरी तरीके से इलीगल है।
0: राइट, so now we're learning that the Congress in fact is still protesting in Madhya Pradesh even in the night because of all the drama that has been unfolding throughout the day. They still maintain that there is nothing wrong and that there was no place to show just a legal notice. This was just a show cause notice that she had received. There were no criminal cases against her, so they are not wrong on their side and they are going to meet the ECI over this tomorrow. Thank you so much for joining in, Ravish Pal. Amid the rebellion in TMC, embattled former CM Mamata Banerjee met Congress Parliamentary Party Chairperson Sonia Gandhi at her residence in New Delhi. In Kolkata, a team of West Bengal CID reached Mamata Banerjee's Kolkata residence to serve notice to her nephew Abhishek Banerjee in the signature forgery case. Meanwhile, TMC rebels continued to attend administrative meetings chaired by CM Suvendu Adhikari.
4: Just months ago, they were trading barbs on the campaign trail. Today, they are sharing hugs, smiles and photographs. And a day later, Mamata Banerjee paid a visit to Sonia Gandhi at 10 Janpath. The optics have become impossible to ignore. All this as Mamata battles a growing revolt. Already battling a rebellion in Bengal, the revolt is now spilled into Parliament. Rebel MP Kakuli Ghosh claims she is the real chief whip of the TMC in the Lok Sabha. The Mamata camp counters that Kalyan Banerjee remains the authorized chief whip. The rebel claim they have the support of 20 TMC MPs. Mamata loyalists dismiss the figure as fiction, insisting several MPs named by the rebels have publicly rejected the claim. The rebels accuse Mamata's government of failing on development and claim the RG Corps outrage triggered the unrest. The TMC's response is equally sharp. The rebels say they want to join the NDA. The Mamata camp calls them traitors and challenges them to resign and seek a fresh mandate.
5: In gaddaron se main janna chahta hu ki tumhe takleef ho rahi thi to tumne इलेक्शन के बाद ये तकलीफ क्यों जाहिर की? इलेक्शन के पहले करना चाहिए था और इलेक्शन के बाद अनेकों आरोप लगाए सुखेंदु शेखर ने और रिजाइन कर दिया। कम से कम उसने एक पॉलिटिकल एथिक्स दिखाया कि वह जिस पार्टी में था, जिस सिंबल के साथ राज्यसभा में एमपी था, उसकी समस्या थी, उसने रिजाइन कर दिया।
6: जीतने के बाद भी बोले थे, बोलने की कोशिश किए थे, वहाँ पे सिस्टम नहीं है बोलने का, बोलने से सब रोकते हैं, जो नहीं बोलना है नहीं बोलना है, तो और अगर बोले भी तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलते, आप 7 दिन 10 दिन इंतजार करो, कुछ नहीं।
4: Meanwhile, a CID team visited the residence of Mamata Banerjee in Kalighat. Sources say the investigators went there to serve notice to her nephew Abhishek Banerjee in the alleged signature forgery case. Bureau Report, India Today.
0: We are have breaking news coming in. Amid NEET row, NTA is surrounded by yet another controversy. Now students are alleging discrepancies in NIFT results. Top NTA sources have told India Today that only 15 students out of nearly 12,000 candidates approached the agency with complaints regarding their results. According to the sources, all such grievances have been examined and resolved. The clarification comes after some students raised concerns about the results on social media. This is yet another controversy now we're seeing after NEET. This is the NIFT entrance exam, which is a fashion institute where students have been alleging that there have been discrepancies in the kind of results that they have gotten after the entrance exam, which is also conducted by NTA. But now NTA is responding, saying that only 15 students out of nearly 12,000 candidates have approached the agency with complaints. For more on that, we have Anmol Bali joining us. Anmol, now we're seeing that NTA has responded to India Today, saying that it has received only 15 students' complaints out of nearly 12,000 candidates. But we're seeing that there's been various complaints being raised by the students. What is it that you've been finding?
7: As you know, after the NEET UG paper leak controversy, National Test Agency has once again came under the scrutiny, and this time students who have appeared for NEET 2026 examination, inter-examination, has alleged discrepancies in their scorecards as well as attendance records. India Today has spoke to various students around the India, and they have clearly said that they have also taken to social media claiming that their scorecard is not matching what they were expecting, and even many have raised issues like they were present in the examination hall, but they were marked absent, and many said they were absent and they are marked present in their examination. We have reached NTA for their take and their version on this issue, and they have clearly said that out of 12,000, only few, around 15 students have approached to NTA. They have mailed to NTA and their issues have been resolved, but still, we have talked with many students. They are saying they have mailed to a National Test Agency, they have been calling to National Test Agency, and still they haven't got any satisfactory reply from the testing agency, Jessica.
0: Right. So what we're learning is that despite NTA saying that only 15 students reached out to them with their grievances, there are still many students who say they have been affected by this. They have reached out to NTA, yet they haven't received a satisfactory response. Thank you so much for joining in, Anmol.

0: For decades, Zojila was both a gateway and a challenge. A mountain pass connecting Kashmir and Ladakh. But one that winter could shut down for months. Today, India has punched through that barrier. In a major engineering milestone, the final rock wall inside the strategic Zojila tunnel has been breached, bringing the ambitious all-weather connectivity project a giant step closer to reality.
1: It's a historic day for India's strategic infrastructure as well as modern technology and the infrastructure in the mountain area. Extremely difficult Himalayan terrain, as we see, the breakthrough has been achieved at the critical Zojila tunnel. This is world's longest and at the highest tunnel, 13-kilometer Zojila tunnel. This will give significant connectivity to Kashmir and Ladakh.
0: Built at an altitude of over 11,500 feet, over 13 kilometers long, the Zojila tunnel will become the world's longest bidirectional single-tube road tunnel, a project many believed was impossible to get completed. Engineers battled sub-zero temperatures, avalanches, and unstable geology to reach this point.
2: This tunnel is state of art. ये वर्ल्ड क्लास सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाई गई है और इससे लद्दाख लेह को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी।
0: बियॉन्ड कनेक्टिविटी द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बूस्ट टूरिज्म इम्प्रूव ट्रेड क्रिएट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड स्ट्रेंथन स्ट्रेटेजिक एक्सेस टू वन ऑफ इंडियाज मोस्ट सेंसिटिव रीजन्स विद आशुतोष मिश्रा ब्यूरो रिपोर्ट India Today.
3: Karnataka is in trouble once again. Just a week after DK Shivkumar took charge as chief minister, discontent has surfaced within his cabinet, with some ministers unhappy over their portfolios. Sources say more leaders are awaiting the high command's nod on key positions, with DK set to meet the Congress leadership in Delhi tomorrow. All eyes are on whether the high command can diffuse the growing unrest. Take a look.
4: The Karnataka political drama is showing no signs of ending. Barely a week after DK Shivakumar took charge as chief minister, signs of discontent have begun surfacing over portfolio allocation. So far, two ministers, K.H. Muniyappa and Krishna Baire Gowda, have expressed dissatisfaction with their portfolios. Sources say several other ministers are also unhappy and could consider stepping down if their concerns are not addressed. Karnataka Chief Minister DK Shivakumar will leave for Delhi on Wednesday on his first visit to the national capital after resuming office. The visit could prove crucial as Shivakumar is expected to meet the Congress High Command. Cabinet expansion likely to top the agenda. Portfolio row may come up for discussion. Additional charges may be offered to pacify unhappy ministers. Discussion is also likely on Congress MLA Rizwan Arshad's cabinet aspirations.
5: As far as I know, already the party high command and the honorable chief minister has already allotted the portfolios. I think if there is anything need to be discussed, it will be sorted out amicably. I don't think there is any issue in this.
4: Earlier, Minister Ramalinga Reddy had offered to resign from the cabinet, but was persuaded by Chief Minister DK Shivakumar to reconsider.
6: Since 89, I am MLA. In 92, first I became minister. See, this is sixth time I am becoming minister. I have not lobbied for ministership since from beginning. Even for portfolio also, I never lobbied. They offered me and they have taken back. That was the issue, that's all.
4: The BJP has seized the opportunity to target the Congress government.
7: Congress ke andar सब ठीक ठाक नहीं है ऐसा दिखाता है और दूसरा बहुत लोग मंत्री होने का कंपटीशन में है वो मालूम होता है आने वाले दिन में मुझे लगता है सरकार सही दिशा से लेके जाना मुश्किल होता है
4: It has been just a week since the government took office. But signs of trouble are already emerging for Shivakumar's administration. Is this another chapter in Karnataka's never-ending political drama? Bureau Report, India Today.
3: For lakhs of government job aspirants in India, the examination begins long before they enter the exam hall. It starts on crowded platforms, inside packed train compartments, and through sleepless nights spent waiting for a chance to reach the examination center. Chaotic scenes were witnessed at several railway stations across Uttar Pradesh as aspirants travel in pursuit of their dream job. Here's a report.
8: Trains, overflowing platform, and endless hours of waiting. Some spread bed sheets on station floors, others make do with plastic sheets. It's a familiar scene year after year. Every recruitment exam brings with it not just the test of knowledge, but the test of endurance. From towns and villages across Uttar Pradesh, thousands set out with a single goal, clearing the UP constable exam.
9: डेढ़ घंटा गाड़ी खड़ी हुई थी
10: गर्मी के माहौल में आप सब परेशान
9: पैदल वहां से यहां स्टेशन तक पैदल आए
11: कोई व्यवस्था नहीं बस यहीं से फिर जाना दूसरा स्टेशन के लिए गाड़ी पकड़ना डायरेक्ट मेरे लिए कोई गाड़ी भी नहीं है जैसे कि बोला गया था कि बस का किराया फ्री है 10% भी छूट नहीं है उसमें 25% की आप छोड़िए
12: अभी स्थिति ठीक है अभी 50% की रियायत मिल रही है जैसे मेरे कई दोस्त गए हैं तो बता रहे हैं 50% छूट मिल रही है
8: Nearly 28.9 lakh candidates competing for just 32,679 constable vacancies. The odds are daunting, the journey even more so. Making it to the exam hall is just the first hurdle. What they fear most are paper leaks and cancelled tests.
13: आज सिर्फ देखे आए इतना कॉन्फिडेंट लेकिन ये भी भरोसा नहीं है कल को हमारा आएगा भी रिजल्ट आएगा नहीं पता लगा सुबह पता न्यूज आ गई कि पेपर लीक हो गया
14: मेरे लिए तो बहुत जरूरी है बस हो जाए बस पेपर लीक ना हो कहने का मतलब बस ये हो जाए ठीक से
15: क्या उम्मीद करते हैं सरकार से पेपर अच्छे से
14: लीक ना करे बस यही उम्मीद रखते हैं बस
16: जो लोगों के जो फेस कर रहे हैं वो पेपर लीक के बारे में कर रहे हैं
15: किस तरीके से संघर्ष करके यहाँ पर दो दो दिन का सफर तय करके भीड़ में जहाँ पे खड़े होने तक की जगह नहीं है उस तरीके से लोग आते हैं यहाँ पर पीछे आपके सामने नज़ारा दिखाएगी कैमरे पे किस तरीके से जो लोग हैं वो नीचे बेडशीट तक नहीं है लोग यहाँ पर आप देखेंगे तो मोमियाँ बिछाने को मजबूर हैं भीषण गर्मी हो रही है ऐसे में किस तरीके से जो ये छात्र हैं उन चीज़ों से गुजरते हैं और उसके बाद किस तरीके का सामना करना पड़ता है एक ही दरख्वास्त और एक ही रिक्वेस्ट है सरकार से कि बस पेपर ठीक हो जाए पेपर लीक ना हो पास हों या ना हों ये तो बाद में देख लेंगे
8: They have battled for space on trains. They're also fighting a system that has repeatedly tested their patience with leaks and poor infrastructure.
17: ऐसे मुद्दों को दिखाने के लिए मीडिया भी लोकल एक मीडिया दिखा पाती है इंटरनेशनल जो मीडिया है वो नहीं दिखाती है इंटरनेशनल लेवल की मीडिया है वो क्या करती है ये देखे कि झालमुरी कैसे बनती है बंगाल में झालमुरी का कैसे प्रचार होता है हाँ प्रधानमंत्री जी वो मेलोडी के चॉकलेट कैसे खिलाते हैं
8: दिस टाइम दे होप द टेस्ट मेजर्स ओनली देयर मेरिट With Sima Chawla, Gajendra Tripathi and Abhishek Tripathi, Bureau Report, India Today.
3: Hospital beds filled with sick children, anxious parents searching for answers, and a disturbing allegation at the center of it all, contaminated drinking water. In Guna, nearly 18 children have fallen ill, while questions are mounting over civic negligence and delayed action. As families demand accountability, our report investigates what may have gone terribly wrong.
4: In Guna, a basic necessity may have become a dangerous threat. Nearly 18 children have landed in hospital after sudden vomiting and diarrhea. Their families are blaming contaminated drinking water.
18: पानी तो लगभग बहुत टाइम से खराब आ रहा है लेकिन 8-10 दिन से ज्यादा ही खराब आ रहा है पानी और 4-5 दिन से तो बच्चे की उस पानी के चक्कर में हम उबाल के पानी दे रहे हैं तो उससे भी अभी आराम नहीं क्योंकि अब ज्यादा कंडीशन खराब हो गई थी एकदम से आराम उसको नहीं मिलेगा
19: दस्त पेट उल्टी बुखार सब कुछ हो रहा था पता नहीं पानी के कारण पानी भी साफ नहीं आ रहा, गंद पानी आते।
20: कितने दिनों से पानी की समस्या थी? अच्छा,
19: जब कभी मुझे आ रहा पानी, मतलब ऐसे बस ही आते पानी में।
21: The visuals tell a disturbing story. In several areas, sewage and drinking water lines appear dangerously close. At the district hospital, questions were raised over the response as well. The duty doctor was missing.
22: आप बता दीजिए।
19: पेशेंट वहाँ पर देखिए ना पेशेंट।
22: हाँ बाप।
19: स्टाफ देखता है वो बता देगा।
22: नहीं तो आप बता दीजिए थोड़ा क्या है?
19: एक बार कैसेट में कैसेट से बता
22: दूँ? नहीं, आपने मत देखा बच्चों कंडीशंस कैसी क्यों?
19: भाई कैसेट देखिए बस, उसमें कैसेट देखना
22: पड़ेगा। पापा को दिखे नहीं अभी तक।
21: Doctors treating the children acknowledged that contaminated water is a likely cause.
23: लगातार पेट दर्द उल्टी रस की सजा साल करती है। नाच में पाए गए कि इनका पीलिया कुछ बच्चों को हेपेटाइटिस देरी भी करवाया। संभावना ये लग रही है कि ताश पानी में वो कॉन्टेमिनेशन हुआ है जिसकी वजह से इन बच्चों को कहला।
21: Only after the number of sick children rose did officials swing into action.
24: हमने जाके वहाँ पे एक H2S सैंपलिंग किट होती है जो कि वाटर कंटेमिनेशन के लिए यूज की जाती है, उसमें हमने सैंपल लिए तो उसमें कोई भी सैंपल पॉजिटिव नहीं आया, सारे नेगेटिव रहे, मतलब कोई भी पानी कंटेमिनेटेड नहीं था। बाकी हमने जो पानी के सैंपल्स हैं वो पीएचई लैब में रिपोर्ट्स के लिए भेजे हैं।
21: The district administration says treatment remains priority.
25: Immediately मैंने नगर पालिका की जो वाटर का काम देखते हैं अधिकारियों को फोन करके वहाँ भेजा था, उन्होंने 5 सैंपल भी लिए तो अभी ये कंफर्म नहीं कि किसी पानी की वजह से बीमार है, तो कई सारे फैक्टर्स समझ में आ रहे हैं, बट हमारा फोकस उनका सेहत है, वो जल्दी ठीक हो जाए।
21: For these families, the questions are painfully simple. If complaints were made, why wasn't action taken? This is Vikas Dixit, Bureau Report, India Today.
3: And with that, it's a wrap on this bulletin. Thank you for watching. For more news and updates, you can log into indiatoday.in or check out the India Today app.
26: You are watching India Today.
27: What's up, everybody? It's Bretzky, and America is turning 250. And I can't think of a better way to celebrate that than playing on an American-owned social casino, SpinQuest.com. With all of your favorite games, live craps, bubble craps, live blackjack, there's no better place to play for free and win real cash prizes. SpinQuest.com.
28: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
29: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
30: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the 3 little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.

0: Welcome back. You are with the news today. Let's turn to our Get Real India story. A lot of focus in recent weeks has been on the NEET and CBSE exams. But what of the examinations that involve government job seekers? Lakhs of government job aspirants in India. The examination process begins long before they even enter the examination hall. It starts on crowded railway platforms, inside packed train compartments, and through sleepless nights, waiting for a chance to even enter the examination center. Chaotic scenes have been witnessed at several railway stations across Uttar Pradesh as aspirants travel in pursuit of their dream government job. It's our Get Real India story.
1: Trains, overflowing platform, and endless hours of waiting. Some spread bed sheets on station floors, others make do with plastic sheets. It's a familiar scene year after year. Every recruitment exam brings with it not just the test of knowledge, but the test of endurance. From towns and villages across Uttar Pradesh, thousands set out with a single goal, clearing the UP constable exam.
2: डेढ़ घंटा गाड़ी खड़ी हुई थी
3: गर्मी के माहौल में आप सब परेशान
2: पैदल वहां से यहां स्टेशन तक पैदल आए
4: कोई व्यवस्था नहीं बस यहीं से फिर जाना दूसरा स्टेशन के लिए गाड़ी पकड़ना डायरेक्ट मेरे लिए कोई गाड़ी भी नहीं है जैसे कि बोला गया था कि बस का किराया फ्री है 10% भी छूट नहीं है उसमें 25% की आप छोड़िए
5: अभी स्थिति ठीक है अभी 50% की रियायत मिल रही है जैसे मेरे कई दोस्त गए हैं तो बता रहे 50% छूट मिल रही है
1: Nearly 28.9 lakh candidates competing for just 32,679 constable vacancies. The odds are daunting, the journey even more so. Making it to the exam hall is just the first hurdle. What they fear most are paper leaks and cancelled tests.
6: सिर्फ देखे आए इतना कॉन्फिडेंट लेकिन ये भी भरोसा नहीं है कल को हमारा आएगा भी रिजल्ट आएगा नहीं पता लगा सुबह पता न्यूज आ गई कि पेपर लीक हो गया
7: मेरे लिए तो बहुत जरूरी है बस हो जाए बस पेपर लीक ना हो कहने का मतलब बस ये हो जाए ठीक से
3: क्या उम्मीद करते हैं सरकार से पेपर अच्छे से
7: लीक ना करें बस यही उम्मीद रखते हैं बस
8: जो लोगों के जो फेस कर रहे हैं वो पेपर लीक के बारे में कर रहे हैं
3: किस तरीके से संघर्ष करके यहाँ पर दो दो दिन का सफर तय करके भीड़ में जहाँ पे खड़े होने तक की जगह नहीं है उस तरीके से लोग आते हैं यहाँ पर पीछे आपके सामने नज़ारा दिखाएगी कैमरे पे किस तरीके से जो लोग हैं वो नीचे बेडशीट तक नहीं है लोग यहाँ पर आप देखेंगे तो मोमियाँ बिछाने को मजबूर हैं भीषण गर्मी हो रही है ऐसे में किस तरीके से जो ये छात्र हैं उन चीज़ों से गुजरते हैं और उसके बाद किस तरीके का सामना करना पड़ता है एक ही दरख्वास्त और एक ही रिक्वेस्ट है सरकार से कि बस पेपर ठीक हो जाए पेपर लीक ना हो पास हो या ना हो ये तो बाद में देख लेंगे
1: They have battled for space on trains. They're also fighting a system that has repeatedly tested their patience with leaks and poor infrastructure.
9: ऐसे मुद्दों को दिखाने के लिए मीडिया भी लोकल एक मीडिया दिखा पाते हैं इंटरनेशनल जो मीडिया है वो नहीं दिखाते इंटरनेशनल लेवल की मीडिया है वो क्या करती है ये देखे कि झालमुरी कैसे बनती है बंगाल में झालमुरी का कैसे प्रचार होता है वहाँ प्रधानमंत्री जी वो मेलोडी के चॉकलेट कैसे खिलाते हैं
1: दिस टाइम दे होप द टेस्ट मेजर्स ओनली देयर मेरिट With Sima Chawla, Gajendra Tripathi and Abhishek Tripathi, Bureau Report, India Today.
0: And finally, let's end tonight with a good news today story. High in the Himalayas, India has achieved a major engineering milestone. The Zozila Tunnel breakthrough brings all-weather connectivity to Ladakh a step closer, promoting easier travel, stronger logistics and year-round access to one of the country's most remote but beautiful regions. Take a look at Good News Today.

0: are watching India Today.
1: Hospital beds filled with sick children, anxious parents searching for answers, and a disturbing allegation at the center of it all, contaminated drinking water. In Guna, nearly 18 children have fallen ill, while questions are mounting over civic negligence and delayed action. As families demand accountability, our report investigates what may have gone terribly wrong.
2: In Guna, a basic necessity may have become a dangerous threat. Nearly 18 children have landed in hospital after sudden vomiting and diarrhea. Their families are blaming contaminated drinking water.
3: Pani to lagbhag bahut time se kharab aa raha hai lekin 8-10 din se zyada hi kharab aa raha hai pani aur 4 maah ke se to bachche ki us pani ke chakkar mein hum ubal ke pani de rahe hain.
2: The visuals tell a disturbing story. In several areas, sewage and drinking water lines appear dangerously close. At the district hospital, questions were raised over the response as well. The duty doctor was missing.
4: आप बता दीजिए.
3: पेशेंट वहाँ पर देखिए ना पेशेंट.
4: कहाँ पर?
3: स्टाफ देखता है वो बता देगा.
4: नहीं तो आप बता दीजिए थोड़ा क्या है.
3: पर कैसेट में कैसेट से होता है.
4: नहीं आपने मत देखा बच्चों कंडीशंस कैसी क्यों.
3: वही कैसेट देखिए बस आपने कैसेट देखा.
4: आपने वो देखा ही नहीं अभी तक.
2: Doctors treating the children acknowledged that contaminated water is a likely cause.
5: लगातार सिर दर्द उल्टी रस की सजा साफ होती है नाच में पाए गए कि इनका पीलिया कुछ बच्चों का हेपेटाइटिस देरी बोई तो आया संभावना ये लग रही है कि पानी में वो कॉन्टामिनेशन हुआ है जिसकी वजह से इन्हें बच्चों को कहला
2: Only after the number of sick children rose did officials swing into action.
4: हमने जाके वहाँ पे एक S2S सैंपलिंग किट होती है जो कि वाटर कंटामिनेशन के लिए यूज की जाती है उसमें हमने सैंपल लिए तो उसमें कोई भी सैंपल पॉजिटिव नहीं आया सारे नेगेटिव रहे मतलब कोई भी पानी कंटामिनेटेड नहीं था बाकी हमने जो पानी के सैंपल्स हैं वो पीएचई लैब में रिपोर्ट्स के लिए भेजे हैं
2: द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सेज ट्रीटमेंट रिमेंस प्रायोरिटी
6: इमीडिएटली मैंने नगरपालिका की जो वाटर का काम देखते हैं अधिकारियों को फोन करके वहां भेजा था उन्होंने 5 सैंपल भी लिए तो भी ये कंफर्म नहीं कि किसी पानी की वजह से बीमारी तो कई सारे फैक्टर्स समझ में आ रहे हैं बट हमारा फोकस उनका सेहत है जल्दी ठीक हो जाए
2: फॉर दीज फैमिलीज द क्वेश्चंस आर पेनफुली सिंपल इफ कंप्लेंट्स वर मेड व्हाई वाजंट एक्शन टेकन विकास दीक्षित ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया टुडे
1: एंड विद दैट इट्स अ रैप ऑन दिस बुलेटिन थैंक यू फॉर वाचिंग फॉर मोर न्यूज एंड अपडेट्स यू कैन लॉग इन टू indiatoday.in और चेक आउट द इंडिया टुडे ऐप
0: are watching India Today.

0: जब से भाजपा की सरकार सत्ता में आई है ना, 12-13 साल हो गए, उनका एक ही काम रहा है, जहां जहां जाते हैं उनको हमारे मुसलमानों के खाने पीने से नफरत, पहनने ओढ़ने से नफरत, बुरके से, हिजाब से, मस्जिद से, मदरसे से, खानकाहों से, हर चीज से बस इनको नफरत ही नफरत है। अब ये देखिए यूपी में कितने मदरसों को इन लोगों ने वो कर दिया, हाँ, अब बंगाल के अंदर मदरसों के पीछे पड़ गए, मदरसा ही है। अरे मदरसा से अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े लोग पढ़ के निकले, जरा उनका भी तो उल्लेख करिए ना, बताइए। अब मदरसों का सर्वे करिए, साथ साथ में मंदिरों का सर्वे क्यों नहीं करते आप लोग, हाँ? शिशु मंदिर है उनका भी सर्वे करिए ना। संविधान तो इक्वलिटी की बात करता है, कायदा कानून तो सब पे बराबर लागू होना चाहिए ना, तो मदरसों का करेंगे, मंदिरों का सर्वे क्यों नहीं करते आप? अरे आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन है, उसका रजिस्ट्रेशन है क्या? जरा पूछो उनको। तो सर्वे जब करे तो सप्ताह ही करिए ना, मगर नहीं, मुसलमानों के खिलाफ ये करना है, मुसलमानों के मदरसों को बदनाम करना है, ये बीजेपी की टेक्निक बन गई है ध्यान भटकाने के लिए।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: are watching India Today.
1: Hospital beds filled with sick children, anxious parents searching for answers, and a disturbing allegation at the center of it all: contaminated drinking water. In Guna, nearly 18 children have fallen ill, while questions are mounting over civic negligence and delayed action. As families demand accountability, our report investigates what may have gone terribly wrong.
2: In Guna, a basic necessity may have become a dangerous threat. Nearly 18 children have landed in hospital after sudden vomiting and diarrhea. Their families are blaming contaminated drinking water.
3: पानी तो लगभग बहुत टाइम से खराब आ रहा है, लेकिन 8-10 दिन से ज्यादा ही खराब आ रहा है पानी, और 4-5 दिन से तो बच्चे की उस पानी के चक्कर में हम उबाल के पानी दे रहे हैं, तो उससे भी अभी आराम नहीं, क्योंकि अब ज्यादा कंडीशन खराब हो गई थी, एकदम से आराम उसको नहीं मिलेगा।
4: दस्त, पेट, उल्टी, बुखार, सब कुछ हो रहा था, पता नहीं पानी के कारण, पानी भी साफ नहीं आ रहा, गंद पानी आते।
5: कितने दिनों से पानी की समस्या थी?
4: जब कभी मुझे आ रहा पानी, 15 आते पानी में।
2: The visuals tell a disturbing story. In several areas, sewage and drinking water lines appear dangerously close. At the district hospital, questions were raised over the response as well. The duty doctor was missing.
6: आप बता दिए?
4: पेशेंट वहाँ पर देखिए ना पेशेंट।
6: हाँ बाप।
4: स्टाफ देखता है वो बता देगा।
6: नहीं तो आप बता दिए थोड़ा क्या है?
4: बस कैसेट में कैसेट से बता
6: दूँ? नहीं आपने मत देखा बच्चों कंडीशंस कैसी क्यों?
4: वही कैसेट देखिए बस उसमें कैसेट देखा
6: पड़ेगा। आपने वो देखा ही नहीं अभी तक।
2: Doctors treating the children acknowledged that contaminated water is a likely cause.
7: लगातार पेट दर्द उल्टी रस की सजा साबित की है। जांच में पाया गया कि इनका पीलिया कुछ बच्चों का हेपेटाइटिस देरी भी करवाया। संभावना ये लग रही है कि दस्त पानी में वो कॉन्टेमिनेशन हुआ है, जिसकी वजह से इन बच्चों का लाइफ।
2: Only after the number of sick children rose did officials swing into action.
8: हमने जाके वहाँ पे एक H2S सैंपलिंग किट होती है जो कि वाटर कंटेमिनेशन के लिए यूज की जाती है, उसमें हमने सैंपल लिए तो उसमें कोई भी सैंपल पॉजिटिव नहीं आया, सारे नेगेटिव रहे, मतलब कोई भी पानी कंटेमिनेटेड नहीं था। बाकी हमने जो पानी के सैंपल्स हैं वो PHE लैब में रिपोर्ट्स के लिए भेजे हैं।
2: The district administration says treatment remains priority.
9: Immediately मैंने नगर पालिका की जो वाटर का काम देखते हैं अधिकारियों को फोन करके वहां भेजा था, उन्होंने 5 सैंपल भी लिए, तो अभी ये कंफर्म नहीं कि किसी पानी की वजह से ही बीमार है, तो कई सारे इफेक्ट सामने आ रहे हैं, बट हमारा फोकस उनका सेहत है, वो जल्दी ठीक हो जाए।
2: For these families, the questions are painfully simple. If complaints were made, why wasn't action taken? This is Vikas Dixit, Bureau Report, India Today.
0: You are watching India Today.
10: There's a wild world waiting on Earth Day 365. Hunt with predators. Dive with sharks. Explore the unexplored. From nature, science, and space. To premiere original series and exclusive IMAX theatre documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel.
11: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.

0: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.
1: Welcome back. You are with the news today. Let's turn to our Get Real India story. A lot of focus in recent weeks has been on the NEET and CBSE exams. But what of the examinations that involve government job seekers? Lakhs of government job aspirants in India. The examination process begins long before they even enter the examination hall. It starts on crowded railway platforms, inside packed train compartments, and through sleepless nights, waiting for a chance to even enter the examination center. Chaotic scenes have been witnessed at several railway stations across Uttar Pradesh as aspirants travel in pursuit of their dream government job. It's our Get Real India story.
2: Trains, overflowing platform, it's an endless hours of waiting. Some spread bed sheets on station floors, others make do with plastic sheets. It's a familiar scene year after year. Every recruitment exam brings with it not just the test of knowledge, but the test of endurance. From towns and villages across Uttar Pradesh, thousands set out with a single goal, clearing the UP constable exam.
3: डेढ़ घंटा गाड़ी खड़ी हुई थी
4: गर्मी के माहौल में आप सब परेशान
3: पैदल वहां से यहां स्टेशन तक पैदल आए
5: कोई व्यवस्था नहीं बस यहीं से फिर जाना दूसरा स्टेशन के लिए गाड़ी पकड़ना डायरेक्ट मेरे लिए कोई गाड़ी भी नहीं है जैसे कि बोला गया था कि बस का किराया फ्री है 10% भी छूट नहीं है उसमें 25% की आप छोड़िए
6: अभी स्थिति ठीक है अभी 50% की रियायत मिल रही है जैसे मेरे कई दोस्त गए हैं तो बता रहे 50% छूट मिल रही है
2: Nearly 28.9 lakh candidates competing for just 32,679 constable vacancies. The odds are daunting, the journey even more so. Making it to the exam hall is just the first hurdle. What they fear most are paper leaks and cancelled tests.
7: आज सिर्फ देखे आए इतना कॉन्फिडेंट लेकिन ये भी भरोसा नहीं है कल को हमारा आएगा भी रिजल्ट आएगा नहीं पता लगा सुबह पता न्यूज आ गई कि पेपर लीक हो गया
8: मेरे लिए तो बहुत जरूरी है बस हो जाए बस पेपर लीक ना हो कहने का मतलब बस ये हो जाए ठीक से
9: क्या उम्मीद करते हैं सरकार से पेपर अच्छे से
8: लीक ना करें बस यही उम्मीद रखते हैं बस
10: जो लोगों के जो फेस कर रहे हैं हम वो पेपर लीक के बारे में कर रहे हैं
9: किस तरीके से संघर्ष करके यहाँ पर दो दो दिन का सफर तय करके भीड़ में जहाँ पे खड़े होने तक की जगह नहीं है उस तरीके से लोग आते हैं यहाँ पर पीछे आपके सामने नज़ारा दिखाएगी कैमरे पे किस तरीके से जो लोग हैं वो नीचे बेडशीट तक नहीं है लोग यहाँ पर आप देखेंगे तो मोमियाँ बिछाने को मजबूर है भीषण गर्मी हो रही है ऐसे में किस तरीके से जो ये छात्र हैं उन चीज़ों से गुजरते हैं और उसके बाद किस तरीके का सामना करना पड़ता है एक ही दरख्वास्त और एक ही रिक्वेस्ट है सरकार से कि बस पेपर ठीक हो जाए पेपर लीक ना हो पास हों या ना हो ये तो बाद में देख लेंगे
2: They have battled for space on trains. They're also fighting a system that has repeatedly tested their patience with leaks and poor infrastructure.
11: ऐसे मुद्दों को दिखाने के लिए मीडिया भी लोकल एक मीडिया दिखा पाती है इंटरनेशनल जो मीडिया है वो नहीं दिखाती इंटरनेशनल लेवल की मीडिया है वो क्या करती है ये देखे कि झालमुरी कैसे बनती है बंगाल में झालमुरी का कैसे प्रचार होता है हाँ प्रधानमंत्री जी वो मेलोडी के चॉकलेट कैसे खिलाते हैं
2: This time, they hope the test measures only their merit. With Sima Chawla, Gajinder Tripathi and Abhishek Tripathi, Bureau Report, India Today.
1: And finally, let's end tonight with a good news today story. High in the Himalayas, India has achieved a major engineering milestone. The Zozila Tunnel breakthrough brings all-weather connectivity to Ladakh a step closer, promoting easier travel, stronger logistics and year-round access to one of the country's most remote but beautiful regions. Take a look at Good News Today.

0: are watching India Today.
1: Hospital beds filled with sick children, anxious parents searching for answers, and a disturbing allegation at the center of it all, contaminated drinking water. In Guna, nearly 18 children have fallen ill, while questions are mounting over civic negligence and delayed action. As families demand accountability, our report investigates what may have gone terribly wrong.
2: In Guna, a basic necessity may have become a dangerous threat. Nearly 18 children have landed in hospital after sudden vomiting and diarrhea. Their families are blaming contaminated drinking water.
3: Pani to lagbhag bahut time se kharab aa raha hai, lekin 8-10 din se zyada hi kharab aa raha hai pani. Aur 4 maah ke se to bachche ki us pani ke chakkar mein hum ubal ke pani de rahe hain. तो उससे भी अभी आराम नहीं, क्योंकि अब वो ज्यादा कंडीशन खराब हो गई थी, एकदम से आराम उसको नहीं मिलेगा।
4: दस्त, पेट, उल्टी, बुखार सब कुछ हो रहा था, पता नहीं पानी की कारण, पानी भी साफ नहीं आ रहा, शब्द पानी आते।
5: कितने दिनों से पानी की समस्या थी?
4: जब कभी मुझे आ रहा पानी, मतलब ऐसे बस ही आते पानी में।
2: The visuals tell a disturbing story. In several areas, sewage and drinking water lines appear dangerously close. At the district hospital, questions were raised over the response as well. The duty doctor was missing.
6: आप बता दीजिए।
4: पेशेंट वहाँ पे देखिए ना पेशेंट।
6: कहाँ पर?
4: स्टाफ देखता है वो बता देगा।
6: नहीं तो आप बता दीजिए थोड़ा क्या है?
4: पर कैसेट में कैसेट से होता
6: है? नहीं आपने मत देखा बच्चों कंडीशंस कैसी क्यों?
4: वही कैसेट देखिए बस उसमें कैसेट देखा
6: पड़ेगा। आप देखे नहीं अभी तक।
2: Doctors treating the children acknowledged that contaminated water is a likely cause.
7: लगातार पेट दर्द उल्टी रस की सजा साफ करती है। जांच में पाया गया कि इनका पीलिया कुछ बच्चों का हेपेटाइटिस देरी बोल तो आया। संभावना ये लग रही है कि ताजुद पानी में वो कॉन्टेमिनेशन हुआ है जिसकी वजह से इन्हें बच्चे को कहला।
2: Only after the number of sick children rose did officials swing into action.
8: हमने जाके वहाँ पे एक H2S सैंपलिंग किट होती है जो कि वाटर कंटेमिनेशन के लिए यूज की जाती है, उसमें हमने सैंपल लिए तो उसमें कोई भी सैंपल पॉजिटिव नहीं आया, सारे नेगेटिव रहे, मतलब कोई भी पानी कंटैमिनेटेड नहीं था। बाकी हमने जो पानी के सैंपल्स हैं वो पीएचई लैब में रिपोर्ट्स के लिए भेजे हैं।
2: The district administration says treatment remains priority.
9: Immediately मैंने नगर पालिका की जो वाटर का काम देखते हैं अधिकारियों को फोन करके वहां भेजा था, उन्होंने 5 सैंपल भी लिए तो भी ये कंफर्म नहीं कि किसी पानी की वजह से बीमार है, तो कई सारे फैक्टर्स समझ में आ रहे हैं, बट हमारा फोकस उनका सेहत है, वो जल्दी ठीक हो जाए।
2: For these families, the questions are painfully simple. If complaints were made, why wasn't action taken? This is Vikas Dixit, Bureau Report, India Today.
1: And with that, it's a wrap on this bulletin. Thank you for watching. For more news and updates, you can log into indiatoday.in or check out the India Today app.
0: Are watching India Today.
10: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy non-stop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
11: उनका एक ही काम रहा है, जहां जहां जाते उनको हमारे मुसलमानों के खाने पीने से नफरत, पहनने ओढ़ने से नफरत, बुरके से, हिजाब से, मस्जिद से, मदरसे से, खानकाहों से, हर चीज से बस इनको नफरत ही नफरत है। अब ये देखिए यूपी में कितने मदरसों को इन लोगों ने वो कर दिया, हाँ अब बंगाल के अंदर मदरसों के पीछे पड़ गए कि मदरसा ही है। अरे मदरसा से अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े लोग पढ़ के निकले, जरा उनका भी तो उल्लेख करिए ना, बताइए। अब मदरसों का सर्वे करिए, साथ साथ में मंदिरों का सर्वे क्यों नहीं करते आप लोग? शिशु मंदिर है उनका भी सर्वे करिए ना, संविधान तो इक्वलिटी की बात करता है, कायदा कानून तो सब पे बराबर लागू होना चाहिए ना, तो मदरसों का करेंगे मंदिरों का सर्वे क्यों नहीं करते आप? अरे आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन है, उसका रजिस्ट्रेशन है क्या? जरा पूछो उनको। तो सर्वे जब करे तो सबका ही करिए ना, मगर नहीं मुसलमानों के खिलाफ ये करना है, मुसलमानों के मदरसों को बदनाम करना, ये बीजेपी की टेक्निक बन गई है ध्यान भटकाने के लिए।
12: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: For decades, Zojila was both a gateway and a challenge. A mountain pass connecting Kashmir and Ladakh. But one that winter could shut down for months. Today, India has punched through that barrier. In a major engineering milestone, the final rock wall inside the strategic Zojila tunnel has been breached, bringing the ambitious all-weather connectivity project a giant step closer to reality.
1: It's a historic day for India's strategic infrastructure as well as modern technology and the infrastructure in the mountain area. Extremely difficult Himalayan terrain, as we see, the breakthrough has been achieved at the critical Zojila tunnel. This is world's longest and at the highest tunnel, 13-kilometer Zojila tunnel. This will give significant connectivity to Kashmir and Ladakh.
0: Built at an altitude of over 11,500 feet, over 13 kilometers long, the Zojila tunnel will become the world's longest bidirectional single-tube road tunnel, a project many believed was impossible to get completed. Engineers battled sub-zero temperatures, avalanches, and unstable geology to reach this point. The Zojila tunnel breakthrough enables year-round access to Ladakh, paving the way for all-weather connectivity between Kashmir and Ladakh. Once completed, it will ensure year-round access, faster troop movement, stronger logistics, and significantly boost India's readiness along its northern frontiers. At the breakthrough ceremony, Nitin Gadkari hailed the tunnel as a game-changer for Ladakh.
2: ये जो टनल है ये स्टेट ऑफ आर्ट है ये वर्ल्ड क्लास सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाई गई है और इससे लद्दाख लेयर को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी मैं पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था तो लद्दाख आया था तब पहली बार लोगों ने मुझे कहा था कि हम 6-6 महीने ये सब बंद रहता है और देख कर मुझे बड़ा दुख हुआ और यहाँ की जनता कितने कठिनाइयों का सामना करती है यह बात मेरे ध्यान में आई और तभी मुझे ध्यान में आया कि इसको होना बहुत ही आवश्यक है 14 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई और मुझे इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी मिल गई और विशेष रूप से मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को हाईएस्ट प्रायोरिटी दी
0: बियॉन्ड कनेक्टिविटी द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बूस्ट टूरिज्म इम्प्रूव ट्रेड क्रिएट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड स्ट्रेंथन स्ट्रेटेजिक एक्सेस टू वन ऑफ इंडियाज मोस्ट सेंसिटिव रीजन्स डीप बीनीथ दीज टावरिंग पीक्स इंडिया इज बिल्डिंग मोर देन अ टनल इट इज क्रिएटिंग अ परमानेंट all-weather lifeline to Ladakh. With Ashutosh Mishra, Bureau Report, India Today.
3: And joining me now on this special broadcast on this big story is Lieutenant General D.P. Pandey, former Kashmir Corps commander.

0: are watching India Today.
1: Hospital beds filled with sick children, anxious parents searching for answers, and a disturbing allegation at the center of it all, contaminated drinking water. In Guna, nearly 18 children have fallen ill, while questions are mounting over civic negligence and delayed action. As families demand accountability, our report investigates what may have gone terribly wrong.
2: In Guna, a basic necessity may have become a dangerous threat. Nearly 18 children have landed in hospital after sudden vomiting and diarrhea. Their families are blaming contaminated drinking water.
3: Pani to lagbhag bahut time se kharab aa raha hai, lekin 8-10 din se zyada hi kharab aa raha hai pani. Aur 4-5 din se to bachche ki us pani ke chakkar mein hum ubal ke pani de rahe hain. तो उससे भी अभी आराम नहीं, क्योंकि अब ज्यादा कंडीशन खराब हो गई थी, एकदम से आराम उसको नहीं मिलेगा।
4: दस्त, पेट, उल्टी, बुखार सब कुछ हो रहा था, पता नहीं पानी की कारण, पानी भी साफ नहीं आ रहा, गंद पानी नहीं आते।
5: कितने दिनों से पानी की समस्या भी है?
4: जब कभी मुझे आ रहा पानी, मतलब आते पानी में।
2: The visuals tell a disturbing story. In several areas, sewage and drinking water lines appear dangerously close. At the district hospital, questions were raised over the response as well. The duty doctor was missing.
6: आप बता दिए?
4: पेशेंट वहाँ पर देखिए ना पेशेंट।
6: हाँ बाप।
4: स्टाफ देखता है वो बता देगा।
6: नहीं तो आप बता दिए थोड़ा क्या है?
4: एक बार कैसेट में कैसेट से बता दो।
6: नहीं आपने मत देखा बच्चों कंडीशंस कैसी क्यों?
4: वही कैसेट देखिए बस उसमें कैसेट देखना
6: पड़ेगा। आपने देखा नहीं अभी तक।
2: Doctors treating the children acknowledged that contaminated water is a likely cause.
7: लगातार पेट दर्द उल्टी रस की सजा साफ होती है। जांच में पाया गया कि इनका पीलिया कुछ बच्चों का हेपेटाइटिस देरी भी आया। संभावना ये लग रही है कि ताजा पानी में वो कॉन्टेमिनेशन हुआ है, जिसकी वजह से इन बच्चों को लगा।
2: Only after the number of sick children rose did officials swing into action.
8: हमने जाके वहाँ पे एक H2S सैंपलिंग किट होती है जो कि वाटर कंटेमिनेशन के लिए यूज की जाती है, उसमें हमने सैंपल लिए तो उसमें कोई भी सैंपल पॉजिटिव नहीं आया, सारे नेगेटिव रहे, मतलब कोई भी पानी कंटामिनेटेड नहीं था। बाकी हमने जो पानी के सैंपल्स हैं वो पीएचई लैब में रिपोर्ट्स के लिए भेजे हैं।
2: The district administration says treatment remains priority.
9: Immediately मैंने नगर पालिका की जो वाटर का काम देखते हैं अधिकारियों को फोन करके वहां भेजा था, उन्होंने 5 सैंपल भी लिए तो अभी ये कंफर्म नहीं कि किसी पानी की वजह से बीमार है, तो कई सारे फैक्टर्स समझ में आ रहे हैं, बट हमारा फोकस उनका सेहत है, वो जल्दी ठीक हो जाए।
2: For these families, the questions are painfully simple. If complaints were made, why wasn't action taken? This is Vikas Dixit, Bureau Report, India Today.
0: You are watching India Today.
10: Feeling a bit nostalgic for the 90s? Ooh, yeah. TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, ooh, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
11: We had met the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Mr. Vijay. And in fact, 5 days ago, we had an all-party meeting under my leadership, requesting the state government to do a social justice survey called a caste-based survey, which is long pending in Tamil Nadu. And the reasons which I've already said earlier that Tamil Nadu is the only state which has got more than 50% reservation. We have 69% reservation, protected under the 9th schedule of the Constitution. The central government's taken... said that they're going to do a caste census, which is a macro level data. So the state government will do a micro level data, and for that, like, this is the resolution passed under all party meeting under my leadership, which had resolved that to meet the Chief Minister.
12: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: Welcome back. You are with the news today. Let's turn to our Get Real India story. A lot of focus in recent weeks has been on the NEET and CBSE exams. But what of the examinations that involve government job seekers? Lakhs of government job aspirants in India. The examination process begins long before they even enter the examination hall. It starts on crowded railway platforms, inside packed train compartments, and through sleepless nights, waiting for a chance to even enter the examination center. Chaotic scenes have been witnessed at several railway stations across Uttar Pradesh as aspirants travel in pursuit of their dream government job. It's our Get Real India story.
1: Trains, overflowing platform, and endless hours of waiting. Some spread bed sheets on station floors, others make do with plastic sheets. It's a familiar scene year after year. Every recruitment exam brings with it not just the test of knowledge, but the test of endurance. From towns and villages across Uttar Pradesh, thousands set out with a single goal, clearing the UP constable exam.
2: डेढ़ घंटा गाड़ी खड़ी हुई थी
3: गर्मी के माहौल में आप सब परेशान
2: पैदल वहां से यहां स्टेशन तक पैदल आए
4: कोई व्यवस्था नहीं बस यहीं से फिर जाना दूसरा स्टेशन के लिए गाड़ी पकड़ना डायरेक्ट मेरे लिए कोई गाड़ी भी नहीं है जैसे कि बोला गया था कि बस का किराया फ्री है 10% भी छूट नहीं है उसमें 25% की आप छोड़िए
5: अभी स्थिति ठीक है अभी 50% की रियायत मिल रही है जैसे मेरे कई दोस्त गए हैं तो बता रहे 50% छूट मिल रही है
1: Nearly 28.9 lakh candidates competing for just 32,679 constable vacancies. The odds are daunting, the journey even more so. Making it to the exam hall is just the first hurdle. What they fear most are paper leaks and cancelled tests.
6: आज सिर्फ देखे आए इतना कॉन्फिडेंट लेकिन ये भी भरोसा नहीं है कल को हमारा आएगा भी रिजल्ट आएगा नहीं पता लगा सुबह पता न्यूज़ आ गई कि पेपर लीक हो गया
7: मेरे लिए तो बहुत जरूरी है बस हो जाए बस पेपर लीक ना हो कहने का मतलब बस ये हो जाए ठीक से
8: क्या उम्मीद करते हैं सरकार से पेपर अच्छे से
7: लीक ना करें बस यही उम्मीद रखते हैं बस
9: जो लोगों के जो फेस कर रहे हैं वो पेपर लीक के बारे में कर रहे हैं
8: किस तरीके से संघर्ष करके यहाँ पर दो दो दिन का सफर तय करके भीड़ में जहाँ पे खड़े होने तक की जगह नहीं है उस तरीके से लोग आते हैं यहाँ पर पीछे आपके सामने नज़ारा दिखाएगी कैमरे पे किस तरीके से जो लोग हैं वो नीचे बेडशीट तक नहीं है लोग यहाँ पर आप देखेंगे तो मोमियाँ बिछाने को मजबूर हैं भीषण गर्मी हो रही है ऐसे में किस तरीके से जो ये छात्र हैं उन चीज़ों से गुजरते हैं और उसके बाद किस तरीके का सामना करना पड़ता है एक ही दरख्वास्त और एक ही रिक्वेस्ट है सरकार से कि बस पेपर ठीक हो जाए पेपर लीक ना हो पास हों या ना हो ये तो बाद में देख लेंगे
1: They have battled for space on trains. They're also fighting a system that has repeatedly tested their patience with leaks and poor infrastructure.
10: ऐसे मुद्दों को दिखाने के लिए मीडिया भी लोकल एक मीडिया दिखा पाती है इंटरनेशनल जो मीडिया है वो नहीं दिखाती है इंटरनेशनल लेवल की मीडिया है वो क्या करती है ये देखे कि झालमुरी कैसे बनती है बंगाल में झालमुरी का कैसे प्रचार होता है हां प्रधानमंत्री जी वो मेलोडी के चॉकलेट कैसे खिलाते हैं
1: This time they hope the test measures only their merit. With Sima Chawla, Gajendra Tripathi and Abhishek Tripathi, Bureau Report, India Today.
0: And finally, let's end tonight with a good news today story. High in the Himalayas, India has achieved a major engineering milestone. The Zozila Tunnel breakthrough brings all-weather connectivity to Ladakh a step closer, promoting easier travel, stronger logistics and year-round access to one of the country's most remote but beautiful regions. Take a look at Good News Today.

0: are watching India Today.
1: Hospital beds filled with sick children, anxious parents searching for answers, and a disturbing allegation at the center of it all, contaminated drinking water. In Guna, nearly 18 children have fallen ill, while questions are mounting over civic negligence and delayed action. As families demand accountability, our report investigates what may have gone terribly wrong.
2: In Guna, a basic necessity may have become a dangerous threat. Nearly 18 children have landed in hospital after sudden vomiting and diarrhea. Their families are blaming contaminated drinking water.
3: Pani to lagbhag bahut time se kharab aa raha hai, lekin 8-10 din se zyada hi kharab aa raha hai pani. Aur 4-5 din se to bachchi ki us pani ke chakkar mein hum ubal ke pani de rahe hain. तो उसी भी अभी आराम नहीं, क्योंकि अब वो ज्यादा कंडीशन खराब हो गई थी, एकदम से आराम उसको नहीं मिलेगा।
4: दस्त, पेट, उल्टी, बुखार सब कुछ हो रहा था, पता नहीं पानी की कारण, पानी भी साफ नहीं आ रहा, मतलब पानी नहीं आते।
5: कितने दिनों से पानी की समस्या थी?
4: जब कभी मुझे आ रहा पानी, मतलब आते पानी में।
2: The visuals tell a disturbing story. In several areas, sewage and drinking water lines appear dangerously close. At the district hospital, questions were raised over the response as well. The duty doctor was missing.
5: आप बता दीजिए।
4: पेशेंट वहाँ पर देखेंगे ना पेशेंट?
5: हाँ बाप।
4: स्टाफ देखता है वो बता देगा।
5: नहीं तो आप बता दीजिए थोड़ा क्या है?
4: पर कैसेट में कैसेट से बता दो।
5: नहीं आपने मत देखा, बच्चों कंडीशंस कैसी क्यों?
4: वही कैसेट देखी बस आपने, उसमें कैसेट देखा
5: पड़ेगा। आपने देखा नहीं अभी तक।
2: Doctors treating the children acknowledged that contaminated water is a likely cause.
6: लगातार पेट दर्द, उल्टी, रस की सगा साफ करती है। जांच में पाया गया कि इनका पीलिया, कुछ बच्चों का हेपेटाइटिस डी भी करवाया। संभावना ये लग रही है कि दूषित पानी में वो कॉन्टामिनेशन हुआ है, जिसकी वजह से इन बच्चों को लगा।
2: Only after the number of sick children rose did officials swing into action.
7: हमने जाके वहाँ पे एक H2S सैंपलिंग किट होती है, जो कि वाटर कंटेमिनेशन के लिए यूज की जाती है, उसमें हमने सैंपल लिए, तो उसमें कोई भी सैंपल पॉजिटिव नहीं आया, सारे नेगेटिव रहे, मतलब कोई भी पानी कंटामिनेटेड नहीं था। बाकी हमने जो पानी के सैंपल्स हैं वो पीएचई लैब में रिपोर्ट्स के लिए भेजे हैं।
2: The district administration says treatment remains priority.
8: Immediately मैंने नगर पालिका की जो वाटर का काम देखते हैं अधिकारियों को फोन करके वहां भेजा था, उन्होंने 5 सैंपल भी लिए, तो अभी ये कंफर्म नहीं कि किसी पानी की वजह से बीमार है, तो कई सारे फैक्टर्स सामने आ रहे हैं, बट हमारा फोकस उनका सेहत है, वो जल्दी ठीक हो जाए।
2: For these families, the questions are painfully simple. If complaints were made, why wasn't action taken? This is Vikas Dixit, Bureau Report, India Today.
1: And with that, it's a wrap on this bulletin. Thank you for watching. For more news and updates, you can log into indiatoday.in or check out the India Today app.
0: Are watching India Today.
9: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you non-stop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
10: उनका एक ही काम रहा है, जहां जहां जाते उनको हमारे मुसलमानों के खाने पीने से नफरत, पहनने ओढ़ने से नफरत, बुरके से, हिजाब से, मस्जिद से, मदरसे से, खानकाहों से, हर चीज से बस इनको नफरत ही नफरत है। अब ये देखिए यूपी में कितने मदरसों को इन लोगों ने वो कर दिया, हाँ अब बंगाल के अंदर मदरसों के पीछे पड़ गए, मदरसा ही है। अरे मदरसा से अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े लोग पढ़ के निकले, जरा उनका भी तो उल्लेख करिए ना, बताइए। अब मदरसों का सर्वे करिए, साथ साथ में मंदिरों का सर्वे क्यों नहीं करते आप लोग? शिशु मंदिर है, उनका भी सर्वे करिए ना। संविधान तो इक्वलिटी की बात करता है, कायदा कानून तो सब पे बराबर लागू होना चाहिए ना, तो मदरसों का करेंगे, मंदिरों का सर्वे क्यों नहीं करते आप? अरे आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन है, उसका रजिस्ट्रेशन है क्या? जरा पूछो उनको। तो सर्वे जब करें तो सबका ही करिए ना, मगर नहीं मुसलमानों के खिलाफ ये करना है, मुसलमानों के मदरसों को बदनाम करना है, ये बीजेपी की टेक्निक बन गई है ध्यान भटकाने के लिए।
11: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.